0: सांगो लौडा नि मलाई के भो के भो
1: आरम्भ डिजिटल म्युजिक प्राली प्रस्तुत गर्दछ।